देख जरा ये टोप, पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। ओरा धुनाई की थाली, सूरत तेरी काली काली, तेरे लिए मैं देख

0: तेरे लिए मैं देखिए लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वारे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा।

0: घूम के आए
1: बम्बई पूना झांसी
0: और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

देर जरा ये टोप पहन के बन जा गोप रे बेटा, पहन के बन जा गोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप, काली चमड़ी गोरी कर दे ये लक्ष का टोप रे बेटा, ये लक्ष का टोप। ओ राधुना

0: तेरे लिए मैं देख ये लाया होठों की लाली, अब शादी में होगी न देर, अब शादी में होगी न देर।
1: वाह रे मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, मेरे शेरवा, वाह।

0: घूम के आए
1: बम्बई पूना झांसी
0: और बताओ क्या क्या लाए शहर की काली खांसी और ये अंग्रेजी फांसी।

तमन धन तज जिस पे लुटाया वो जीवन आधा हुआ। जीवन के बाजार में आकर अच्छा ही व्यवहार हुआ। अब उखड़ रहा है मेला, आई पिया मिलन की बेला, आई पिया मिलन की बेला।

झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ ताहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की से अदावत नहीं मुझे।

0: देखते अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: कि देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के पीछे अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन के पीछे अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे।
1: ना झोल है ए जी हम ना कहते थे के दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे।

0: जी अच्छे बुरे को देख के, अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के, अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

0: माँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ वो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की जीते अदावत नहीं मुझे।
1: दुनिया झोल है ए जी, हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ ताहू सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, मैं जाने मन की सी से अदावत नहीं मुझे।

0: देखुचे अच्छे बुरे को देखुचे कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देखुचे, अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की

0: हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ सच के झूठ की, कहता हूँ तो कहता हूँ, कहता हूँ तो कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।
1: झोल है ए जी हम न कहते थे कि दुनिया झोल है, और तुम समझते थे कि बेटा गोल है। समझे मामा, कहता हूँ कहूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

0: चुके, अच्छे बुरे को देख के कहता हूँ साफ बात।
1: क्या?
0: अरे सुनो तो मामा, अरे अच्छे बुरे को देख के अरे कहता हूँ साफ बात। अरे दिन हो तो दिन कहूंगा, अगर रात हो तो रात। अरे जूते का
1: क्या मुंह काला?
0: अरे नहीं सुनो तो मामा, अरे जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे, जूते का साथ देने की आदत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की।

हाँ जी देखो मैं तो नहीं हूँ पर आप हैं। अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे, अब छोड़िए भी पीछा के फुर्सत नहीं मुझे। ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, ऐ जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे। कहता हूँ सच के झूठ की कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे, है जाने मन की भी से अदावत नहीं मुझे।

कर ये संदेश, जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश। धन्य धन्य बुंदेली।

0: कर ये संदेश, जान सभी को प्यारी है पर जान से प्यारा देश।
1: धन्य धन्य बुंदेलखंड।

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी। दिल की कहानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो तारों भर आते हूँ, चंदा की चांदनी हो।

0: नींद दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।

0: बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: सावन में झूले पड़े, सावन में झूले पड़े, फिर मिल झुलाए हम, फिर मिल झुलाए हम।
0: प्यार भरी

0: जवानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरे सपनों की सुंदर रानी दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ मेरी तुझसे प्रीत पुरानी बहुत पुरानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ
0: चंदा की चांदनी हो तारों भरिया हूँ चंदा की चांदनी हो तारों

0: दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी।

0: इन दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ, मेरे सपनों की सुंदर रानी, दिल की कहानी कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
1: मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ। मेरी तुझसे प्रीत पुरानी, बहुत पुरानी, कैसे कहूँ मैं कैसे कहूँ।
0: चंदा की चांदनी हो।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ ले मुझसे, करम से।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ।

वो दिल बेकार है यार, अब ना हो जो तेरा दीवाना। कसम है तुझको मेरे दिल की हालत पूछ।